0: से एक है।
1: वैसे रामेन कई इकसाम के जायकों में भी दस्तयाब है।
0: जी हाँ, रामेन का सूप मुर्ग और खिंजीर की हड्डियों या सी फूड वगैरह से बनता है। जायके के लिए इसमें मिसो की फलियों का पेस्ट, नमक या सोया सॉस वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप कोई चीज़ नहीं खाते तो पहले से उसके अज्जा दरियाफ्त कर लेना बेहतर होगा। अब बाज़ दुकानों में हलाल, एलर्जी से पाक या सिर्फ सब्जियों के अज्जा से तैयार करता रामेन भी दस्तयाब हैं।
1: और अब तो रामेन के नित नए जायके भी दस्तयाब हैं।
0: जी हाँ, बावर्ची नए जायकों की तैयारी जारी रखते हैं। मसलन अब पनीर और गाढ़ी क्रीम के जायके बनाए गए हैं। कई इलाकों में वहाँ के मखसूस अंदाज के रामेन भी हैं। मकामी खानों में दिलचस्पी रखने वाले अफराद जहाँ भी जाते हैं वहाँ के मकामी जायकों से ज़रूर लुत्फ़अंदोज़ होते हैं।